0: Feel the beats. It's Music Rush.
1: मेहरबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

दरअसल उर्दू में बात करने का जो तरीका होता है उसे लहजा कहा जाता है। कितना प्यारा लहजा है। मेरे हुसैन का लहजा इतना प्यारा क्यों था जानते हैं आप? नान जंग में इमाम हुसैन ने हुसैन सरकार के पास आया और कहा कि नाना बहुत प्यास लगी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में डाल दी। ये देखिएगा,

दरबार में प्यासा रह गया, घोड़ा हुसैन का और काबा हुसैन का है, मदीना हुसैन का। जी हाँ, जो भी इमाम अली मकाम के चाहने वाले हैं, और हालांकि हम सब उनके चाहने वाले हैं, आई एम श्योर यू हैव लव्ड दिस कलाम, ब्यूटीफुल कलाम, लाइव रिकॉर्डिंग थी, एंड ऑफ कोर्स आर्टिस्ट वाज मुराद आतिश। बड़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस कलाम को पेश की थी। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लॉन्ग कलाम, बट यू नो आई वुड नॉट बी एबल टू प्ले द एंटायर कलाम ऑन ए। शुक्रन टू महमूद शेख चिश्ती साहब, पीर मैरजबे के रहने वाले हैं, और हमारे दोस्त जनाब स्माइली साहब और बेव्यू। ये स्माइली साहब, शुक्रन भाई जान, मोहब्बत है आप लोग की माशाल्लाह। एंड देन वी हैव आवर आरिफ कसम, वन ऑफ आवर रेगुलर, इस्माइल खान ऑफ केप टाउन, सैफुद्दीन जाफर साहब इज वेल ऑल्सो ऑफ केप टाउन, माशाल्लाह, जजाकल्ला ब्रदर्स फॉर कॉलिंग थ्रू। एंड देन वी हैव our Muhammad and Fatima Bibi Suleiman of Chatsworth in Unit 9, and Saath mein Majid and Quraysha Qadir of Lanesia and their family are also tuned in and listening into the program. We have another community announcement, and that is the Qasim family. The Qasim family of Shellcross, the very well-known Qasim family, and I know the elders used to host the Milad Rasul Arabi Sallallahu Alaihi Wasallam program, but mashallah, the next generation have taken over, and they're doing a splendid job as well. They will be hosting the annual Milad Rasul Arabi Sallallahu Alaihi Wasallam program, Gyarvi Sharif Jalsa, and the Urus Mubarak of various Awliya Allahs on the 7th, 8th and 9th of August. 7th, 8th, 9th of August, and it's at the Sunni Masjid, the Shellcross Sunni Masjid. On Friday the 7th, after Salatul Isha, there will be a Sama program, and one of the leading artists of Durban will be there, inshallah Aziz. Saturday, which is the 8th of August, immediately after Salatul Isha, there'll be a grand mefila nat by local reciters, and Hafiz Rashid Qazi and Hafiz Idris Saab and the other top-notch reciters, Shuaib Qasim as well, will be part of this program. And then Sunday, the program commences at 10:30 a.m. at the very same venue, that is the Sunni Masjid in Shellcross. The man to contact there will be Shuaib Qasim, 083-233-7962, 083-233-7962. Remember, it is the Qasim family Milad Rasul Arabi Sallallahu Alaihi Wasallam program, 7th, 8th, 9th of August at the Shellcross Sunni Masjid. See you guys over there. To aaiye ab hum Khaja Khajagan Khaja Ajmeri Ali Rahma ki bekas panah mein chalte hain, aur jitne bhi Khajagan se belos mohabbat rakhte hain, believe me, you're gonna love this kalam. And bil khusus hamare Rio Sattar sahab, yes, Rio Sattar of Alpine, together with behen Razia, and not forgetting our Haji Ridwan Ismail Chishti sahab, and all the lovers of the Khajagan. Ye kalam aap log ke liye, and it's been specially requested by my brother out there, the elder brother, that is our Rio sahab. Ya khas aap log ke liye hai.

खाजा की अतरिया जरा जी धीरो चलो जी। भोजपुरी में इस कलाम थी एंड ताहिर चश चिश्ती ने इसको सुनाई थी माशाल्लाह। एंड आई एम श्योर द लवर्स ऑफ द खाजगान हैव रियली लव्ड दिस कलाम मोर स्पेशली हमारे रियो सत्तार साहब। यू नो अ ब्यूटीफुल कपलेट कम्स टू माइंड इन भोजपुरी एज वेल कि तुम दीनो दयाल हो मनमोहन या खाजा मोइनुद्दीन हसन। तुम दीनो दयाल हो मनमोहन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। बरसाओ जरा कृपा की भरन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। और जब याद तिहारी आती है ये पगली नीर बहाती है। जब याद तिहारी आती है ये पगली नीर बहाती है और गाती है सदा से तुमरी भजन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। यस ख्वाजा ए ख्वाजगान ख्वाजा अजमेरी अली रहमा की बेकसपनाह में ये कलाम थी। और जनाब फैसल आदम कलंदर अली साहब शुक्रिया भाई साहब ये मोहब्बत है आपकी। आई नो दिस इज अ कलाम इफ योर मरहूम मम वाज लिसनिंग शी वुड हैव लव्ड इट नो डाउट शी वुड हैव लव्ड दिस कलाम। जजाकल्लाह सो मच फैसल आदम साहब। अब्बास शेख लेट्स नॉट फॉरगेट अब्बास शेख एंड आवर इंटरनेशनल मैन अब्दुल मुनाफ फ्रॉम बोत्सवाना शुक्रिया भाईजान। एंड देन असलम Suleiman of Cape Town also listening in through. And then we have our friends from the other denomination that also love the Qawwali, and that is Ricky, our night owl. Yes, Ricky, night owl man, thank you so much. Indrani Kanigi, Vasanti, regular Qawwali listeners from the Gauteng area, thank you guys. And then we have Noel Maharaj. Noel Maharaj, he says he just loves Qawwali. Thank you so much to everyone. If you want more community announcement, there are a few more which I'll do in due course. And this is the 23rd Urus Sharif of Hazrat Ghulam Muhammad Shah Rahmatullah Alay, Imam Bapu Bade Mia of Standerton. And this will be celebrated on the 1st of August. The program on Saturday commences at 11 a.m. Take note, on Saturday at 11 a.m. Milad al-Nabi will and then after Zuhur Salah, langar will be served. Yes, immediately after Zuhur Salah, langar will be served at 2:30 p.m. Gyarvi Sharif. After Asr Salah, Sandal Sharif, which will proceed to the Mazar. And after Maghrib Salah, langar will be served at Masjid Mustafa in Standerton. And after Isha Salah, there will be Zikrullah. Thereafter, Mehfile Sama. And the man, of course, is Idris Sirkot. Yes, Idris Sirkot, a man that needs to be commended for his efforts that he's making in that part of the world. The man to contact is Mustafa on 071-173-8438. 071-173-8438. Milad al-Nabi and 23rd Urus Sharif was Ghulam Muhammad Shah, Imam Bapu Bade Mia, 1st of August in Standerton. All are welcome. There is accommodation for our mothers and sisters as well. This is Ali Mahmood on Qawwali Hour on Lotus FM. जी हाँ, बीबी महमूद के साथ है कवाली नगमों का यह प्रोग्राम लोटस एफएम के महकते हुए गुलशन से नशर किया जा रहा है। इट्स 35 मिनट्स टू 9 ईयर्स। तो आइए अब लिस्ट चलो अब चलो चलो यार बाबा के दरबार में।

0: जब यार रूबरू है तो किस बात का टेंशन।
1: मेरा यार रूबरू है, मेरा यार रूबरू है, यस इम्तियाज साबरी की आवाज थी। एंड शुक्रिया बाबू गोरा साहब, भी आपकी मोहब्बत है। एंड एवरी वन ऑफ यू आउट देयर दैट हैव रियली लव्ड द प्रोग्राम एंड सेंड सच वेरी नाइस मैसेजेस, शुक्रिया। एंड लाइक आई सेड, इफ यू हैव अदर मैसेज, यू नो, बाय ऑल मींस वेयर वी कैन इम्प्रूव, प्लीज लेट मी नो। आई एम एवर ऑब्लाइजिंग, एज लॉन्ग एज योर क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव आई विल लिसन टू इट एज वेल। We have one more community announcement. We have the Malik Murtaza family. Yes, the Malik Murtaza family. And they will be hosting their annual Milad-e-Rasoolah Arabi Sallallahu Alaihi Wasallam program on the 5th and 6th of September. Diarize these dates, 5th and 6th of September. And the 5th, there will be a grand Natia program with the leading reciters of the KZN region will be in attendance. And on Sunday, the 6th, there's a grand Maulud program commencing at 10:30 a.m. And inshallah, Aziz, on Saturday evening, there is accommodation for our mothers and sisters. Niyaz supper will be served. And on Sunday, Niyaz langar will be served as well. Leading scholars will be in attendance. Malik Murtaza family, well known for hosting the program, and it's going to be taking place at the ML Sultan grounds where there's ample parking available, inshallah Aziz. And once again, also we have our Colonel Rauf Sahib. Yes, he'll also be hosting the Urus of the Sheikh Ahmed Batshapir, and this will take place at the Batshapir Square on the 5th of September. 5th of September, commencing after Salat al-Asr. Full program ending with Mehfil Sama, and of course there is accommodation for mothers and sisters as well. Afsos, waqt abhi ijazat nahi de rahi hai, ab alvida ke kehne ka waqt bhi aa chuka hai. Rahi zindagi to phir baatein hongi, na rahi zindagi to bas yaadein hongi. वैसे तो जिंदगी को संभाल के रखना जिंदगी मौत की अमानत है। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। जॉइन मी ऑन वेंसडे इवनिंग 6 p.m. फॉर गुलदस्ता, एंड आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग आउट ऑफ द कलाम बाय बेदम शाह वारसी।

तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे